0: खुम सागर उदास तुम क्या गए के रूप गए दिन बहार।
1: Wall to wall music playing now on SBS South Asian.

0: मित्रों हवे सांभळीए एक सदाबहार जोरदार मजेदार धुआंधार गुजराती गीत अतुल्य सुरना महेर एवा गायक मुकेश नासवरमा
1: नजरना।

0: gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
1: एहतियाती देखभाल में वैक्सीनेशन, पैरासाइट्स से हिफाजत और दांतों की देखभाल शामिल होती है ताकि बीमारियां रोनुमा होने से पहले ही रोकी जा सके। तशखीसी टेस्ट भी बीमारी के किसी भी अलामत को जल्द पहचानने में मदद कर सकते हैं। जानवरों के क्लिनिक के दौरे से पहले कुछ काम हैं जो आप सब कर सकते हैं, डॉक्टर रयान ओंग कहते हैं।
2: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
1: जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो अपनी मुलाकात की वजह बयान करें और अपने पालतू जानवर की किसी खास जरूरत के बारे में क्लिनिक को जरूर आगाह करें, जैसे सजीटो वजाहत करती हैं।
3: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
1: डॉक्टर बार्कर कहती हैं कि मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को नावाकिफ माहौल के साथ निपटने में मदद करने के तरीके मौजूद हो सकते हैं।
0: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
1: एक बार जब आप मशावरत के कमरे में जाएंगे तो डॉक्टर बार्कर का कहना है कि डॉक्टर आपके पालतू जानवर का जिस्मानी मुआयना करते हुए सवालात पूछेगा.
0: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
1: आपकी मुलाकात आपको आपके पालतू जानवर की सेहत के बारे में किसी भी खदशे के हवाले से सवाल करने का मौका भी फराहम करती है। डॉक्टर आपसे इलाज के इख्तियारात पर गुफ्तगू कर सकता है।
0: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: मशावरत के बाद जानवरों का डॉक्टर आपको जरूरी अद्वियात फराहम करेंगे जिन्हें आप इस्तकबालिया से ले सकते हैं, जहां आप बिल की अदायगी भी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ओंग बताते हैं, खुसूसी आलात के साथ वेटरनरी इमरजेंसी मराकज भी बहुत से इलाकों में दस्तयाब हैं अगर आपका पालतू जानवर अचानक बीमार हो जाए या जख्मी हो जाए।
2: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
1: अगर आपको अपने पालतू जानवर के बारे में फौरी तशवीश है तो डॉक्टर ओंग मशवरा देते हैं आप वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर को मशवरा करने के लिए कॉल करें।
2: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
1: जब आप वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर पहुंचेंगे तो अमला आपके पालतू जानवर की जांच करेगा ताकि ये मालूम हो सके कि हालत कितनी संगीन है.
2: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
1: जानवरों के डॉक्टर किसी भी तजवीज करदा तशखीसी टेस्ट और इलाज और मुतवक्का इखराजात की वजाहत करेंगे। पालतू जानवर के मालिक के तौर पर आप अपने पालतू जानवर से मुंसलिक किसी भी इखराजात के जिम्मेदार हैं, बशमूल आपके दौरे के वक्त वेटरनरी फीस की अदायगी, जैसा कि डॉक्टर बार्कर वजाहत करती हैं।
0: How the voting effect is that Sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
1: अगर आपके पास अपने पालतू जानवर की देखभाल पर खर्च करने के हवाले से माली वसाइल महदूद हैं, तो ये बात वेटरनरी अमले के सामने एहतराम के साथ शेयर करना जरूरी है। वेटरनरी टीमें पालतू जानवर की बहुत परवाह करती हैं। मेहरबानी और बाइज्जत बातचीत उन्हें आपके पालतू जानवर की देखभाल पर तवज्जो मरकूज करने और आपके साथ ताउन करने और फिर आपके पालतू जानवर के लिए बेहतरीन फैसला करने की इजाज़त देती है। पालतू जानवरों की इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन है जो वेटरनरी खिदमात के खर्च को पूरा करने में मदद देती है, डॉक्टर ओंग कहते हैं।
2: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
1: पालतू जानवर खानदान के कीमती रुकन होते हैं जो खुशी और हमराही फराहम करते हैं और अपने मकामी वेटरनरी डॉक्टर की मदद से आप सब मिलकर उन्हें खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी फराहम कर सकते हैं। सामईन, आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर वेटरनरी क्लिनिक के हवाले से खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया की इस हफ्ते की किस्त और मैं हूँ वर्दा वकार।
4: आप SBS ऑडियो का पॉडकास्ट सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की दीगर इकसात सुनने के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
1: जी सामईन, तो अब वक्त हो रहा है नशरियात में एक और गीत शामिल करने का। हम शामिल कर रहे हैं और का एक नया गीत, तेरे बिना।

0: जी सामईन, तो इसके साथ हुआ है वक्त के हम लें एक और वक्फा, जिसके बाद आपके साथ मिलकर जानेंगे कि मस्तूई जहानत के इस दौर में सहाफत को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और सहाफती अखलाकियात को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
1: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: SBS Radio se lutfandoz ho rahe hain. Hamare Facebook page par guftugu karein, hame pasand karein aur apne khayalat ka izhar karein. SBS Urdu Facebook par.
7: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
0: सामईन, SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार और नशरियात आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशियन पर। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में कुछ बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की, समाजी राबतों की, वेबसाइट्स की और उस मालूमात की जो एक तूफ़ान की तरह हमारे फ़ोनों में मौजूद है। मस्नूई ज़हानत की तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में सहाफ़त एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां ख़बर की रफ़्तार, दुरुस्तगी और तस्दीक के तरीक़े बुनियादी तौर पर तब्दील हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक AI ने न्यूज़ रूम्स को ज़्यादा मौसर ज़रूर बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ गलत मालूमात, गैर तस्दीक शुदा मवाद और इखलाकी इबहाम के खदशात भी बढ़ गए हैं। गुफ्तगु सुनते हैं सीनियर सहाफ़ी अमर गुरेरा की शादी खान सैफ के पॉडकास्ट में।
8: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
9: सामईन, मस्नूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से खबरों की दुनिया को बदल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तब्दीली एक इनकलाब है या एक बहरान की शुरुआत। पाकिस्तान में इस तब्दीली के एक बड़े नाम, सीनियर सहाफ़ी और मुल्क के पहले AI बेस्ड न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के सरबरा अमर गुरेरो समझते हैं कि मुस्तकबिल की सहाफत मशीनों के हाथ में नहीं बल्कि इंसानों और मशीनों के मुश्तरका कंट्रोल में होगी। आज की इस खसूसी नशस्त में हम जानेंगे कि AI न्यूज़ रूम्स को कहाँ ले जा रहा है और एथिकल जर्नलिज्म इस दुनिया में कैसे ज़िंदा रहेगी।
10: देखिए, मुझे 25 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, तो मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले एक न्यूज़पेपर से। तो उस वक्त हम जो न्यूज़पेपर का जो वाइट पेपर होता है उस पर हम हाथ से लिखते थे और फिर हम जाकर देते थे, फिर वो एडिटर उसी कागज़ पे एडिट करते थे, हेडिंग बनाते थे और वो दे देते थे अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो उसको कंपोज करके फिर प्रिंट निकाल के फिर उसकी प्रूफिंग होती थी और उसके बाद जो है वो पेज मेकर को देकर इस तरह अखबार बनाते थे। तो वक्त के साथ जो है हम फिर कंप्यूटर पे आ गए, फिर मैं अंग्रेजी मीडियम जर्नलिज्म में आया। बहुत अरसा मैंने 17-18 साल जो है वो इंग्लिश मीडियम में काम किया मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में। तो उसके बाद फिर जो है वो डिजिटल का दौर शुरू हुआ। मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू, जो कि द इंडिपेंडेंट UK का उर्दू एडिशन है पाकिस्तान में, कराची में मैंने 7 साल जो है वो उनके साथ रिपोर्टिंग की। तो जब वहाँ पे आए तो हमें वीडियोस भी बनानी होती थी, यानी हम फोटोग्राफर भी थे, हम लोग वीडियोग्राफर भी थे, रिपोर्टर भी थे, हम लोग पॉडकास्ट भी करते थे, तो सारे काम करते थे। तो उसके बाद जब एआई मार्केट में आया तो मुझे ख्याल आया कि अब जैसे हम कागज से निकले, कंपोजिंग की, फिर हमने फोटो निकाले, फिर हमने वीडियो बनाई, पॉडकास्ट किए, तो इस तरह अब ये नया एक चैनल अपना टूल्स आ गया है, तो हमने कहा उस पर जरा स्विच करते हैं। तो एक तो रिपोर्टिंग वाला जो करियर था वो बहुत बड़ा था 25 साल तक, तो अब जाकर हमने ये सागा डिजिटल एआई के नाम से, जो कि पाकिस्तान का पहला एआई पावर्ड मीडिया आउटलेट है।
9: अमर साहब, पाकिस्तान में आपने अपना पहला एआई बेस्ड न्यूज प्लेटफॉर्म शुरू किया, इसके पीछे सोच क्या थी आपकी?
10: तो ये ख्याल इस तरह आया कि जब जमाना चेंज हो रहा है तो हम क्यों ना खुद को चेंज करें, तो यही सोच कर जो है वो मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू से अलहदगी इख्तियार करके और ये चैनल स्टार्ट किया, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स है अब तक जो हमने किया है। देखिए, हमारे यहाँ ना लोग इस चीज को मिक्स करते हैं कि एआई आ गई तो कोई शायद और जर्नलिज्म आ गया। जर्नलिज्म का बेसिक कोर जो है, बुनियाद जो है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। वो जब हम हाथ से लिखते थे तो उस वक्त भी जर्नलिज्म था, जब हम कंपोज करते थे, जब हमने वीडियो बनाई, जब हम ऑडियो पे आए, तो जर्नलिज्म वही रहा। ये सारे टूल्स हैं, तो एआई भी एक टूल है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक लोग एआई को समझे नहीं है। एआई का नाम आते ही लोग समझते हैं कि कोई फेक चीज होगी, कोई दो नंबर काम होगा। भाई एआई से अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू जो है, जैसे ग्लेशियर मेल्टिंग पे अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो एआई से मैं दिखा सकूँ कि ग्लेशियर मेल्ट किस तरह होते हैं और उनकी वजह क्या है, तो वो निस्बतन आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए फिजिकली कि इतना दूर जाएं और फिर इस तरह के ड्रोन कैमराज हों और फिर आप वो बनाएं। तो ये एक टूल यूज करते हुए हमने एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड इशू को आसान बनाया, मगर जर्नलिज्म का जो एथिकल जर्नलिज्म का है वो तो बिल्कुल वही बुनियाद रहेगा। एआई के अंदर जो एंकर, जो मॉडल हम बनाते हैं, उनको हम पूरे डायलॉग्स लिख के देते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, एथिकल कौन सा है, ये सारी चीजें हम जहन में रखते हैं। तो ये आप इसको बिल्कुल मिक्स ना करें, एआई जर्नलिज्म और रवायती जर्नलिज्म में क्या फर्क है। नहीं, जर्नलिज्म तो वही है, टूल रहे हैं। ये हम ऐसे पूछें कि यार अखबार की सहाफत और टीवी की सहाफत में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मीडियम चेंज है। या डिजिटल में क्या फर्क है, भाई डिजिटल एक मीडियम है, अखबार एक मीडियम है, रेडियो एक मीडियम है, टीवी एक मीडियम है, तो इसी तरह एआई जो है वो भी एक मीडियम है, एक टूल है।
9: अमर साहब, क्या आपके ख्याल में एआई सहाफियों के नौकरियों के लिए एक खतरा है, और क्या मुस्तकबिल में न्यूज रूम्स मुकम्मल तौर पर एआई पर चलेंगे?
10: हमारे पास एआई चलाने के लिए हमें दो तीन लोग रखने पड़े, यानी एक प्रोग्राम के लिए हमने दो तीन लोग रखने पड़े। एआई खुद ब खुद तो नहीं बनेगा, उसको जो है वो स्क्रिप्ट एक बंदा लिख के देगा, इंस्ट्रक्शन लिख के देगा, दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो सारे बनाएगा, तीसरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर उनकी एडिट करेगा। तो एआई से लोग जो है वो कुछ जो है ना वक्त के साथ चीजें खत्म होती हैं। जैसे हमने देखा किसी दौर में, मैं डेली टाइम्स में था, उस वक्त 5-5 फोटोग्राफर हुआ करते थे, मगर अभी किसी भी अखबार के पास फोटोग्राफर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो काम अभी नहीं रहा है। तो इसी तरह कैमरामैन का अब नेक्स्ट फेज में नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है। तो अब रिपोर्टर, जैसे हम इंडिपेंडेंट उर्दू में करते थे, रिपोर्टर होते हुए हम कैमरा पर्सन भी थे और हम काम करते थे, तो अब हम कहें कि यार ये मोबाइल आने से कैमरा खत्म हो गया या फोटोग्राफर खत्म हो गए, तो ये नहीं है, काम स्विच होते हैं ना, दूसरे काम आते हैं। एआई जो है वो दूसरे मौके क्रिएट करती है, तो इससे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये फ्यूचर का एक मॉडर्न टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए दीगर शोबे भी कर रहे हैं, तकरीबन हर शोबा जो है वो कर रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ से लेकर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबे कर रहे हैं। तो मीडिया को भी करना चाहिए और इसकी एक हेल्प लेनी चाहिए, मगर बुनियाद जो जर्नलिज्म का है वो वही रहेगा।
9: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सहाफती इकदार पर आपने पाकिस्तान के पहले एआई बेस्ड न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के सरबरा अमर गुरीरो की गुफ्तगू सुनी। यह पॉडकास्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने तैयार किया था।
8: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: جی سامعین، نشریات میں اب شامل کرتے ہیں کچھ اور موسیقی، آپ کو سنواتے ہیں گستاخ عشق، شفقت امانت علی کی آواز میں.

0: जी सामईन, तो इसके साथ वक्त हो रहा है कि हम लें नशरियात का एक और वक्फ़ा, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे उभरती हुई अदाकारा बतूल आबरी की, और इस बारे में भी उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या कुछ सोचती हैं और क्या कुछ करना चाहती हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر۔ سامعین، آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ذرائع مواصلات کے ساتھ ساتھ معلومات کو جانچنے کے طریقے تک تبدیل کر دیے ہیں، تو وہ کون سا کانٹینٹ ہے جو دیکھنے والوں کے لیے پیش کیا جائے؟ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری جو کہ بین الاقوامی طور پر شہرت اختیار کر رہی ہے، کن موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت رکھتی ہے، جبکہ کنٹینٹ کریئٹرز کو اپنا مواد سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہوئے ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے گفتگو کی ہے ابھرتی ہوئی اداکارہ اور کنٹینٹ کریئٹر بتول آبری نے کوکب جہاں سے۔ سنتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔
5: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر SBS اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں sbs.com.au/urdu۔
6: SBS اردو SBS ساؤتھ ایشین پر۔
7: SBS اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہماری مہمان ہیں بتول آبدی۔
8: شکریہ بتول آبدی، آپ نے SBS کے لیے وقت نکالا۔ کی شدید گرمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شوٹ بھی کر رہی ہیں، آؤٹ ڈور بھی کر رہی ہیں، تو کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟
9: تھینک یو سو مچ فار کمنگ فرسٹ آف آل، اور انٹرویو کے لیے آپ نے بولا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ ہم اس وقت راہ گزر کے سیٹ پر ہیں اور میں ایک کیریکٹر پلے کر رہی ہوں جس کا نام ہے نیلوا، اور اس کیریکٹر میں ڈفرینٹ شیڈس ہیں۔ یہ ڈرامہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اچھی خاصی سردیاں تھیں، لیکن اب جو ہے وہ گرمیاں آ گئی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے سیریل تھوڑا لمبا ہے یہ والا۔ بہت مزہ آ رہا ہے اس کیریکٹر میں۔ سب سے پہلے نیگیٹو ہے، اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے اس کی، وہ پھر آپ دیکھیں گے ڈرامے میں، کیونکہ اگر میں یہاں اسٹوری بتا دوں گی تو مزہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔
8: بتول، آپ ابھی نئی آئی ہیں انڈسٹری، تو بتائیں ذرا لوگوں کو کہ کن کن پروجیکٹس میں آپ کیا کرتی ہیں۔
9: اچھا، میرا جو پہلا اسٹارٹ جو میرا تھا وہ میرا پی ٹی وی سے تھا، اینڈ کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ پی ٹی وی جو ہے وہ اتنا کوئی اچھا چینل نہیں ہے، اور اس کے اوپر کام کرنا اب اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ پہلے کے زمانے میں تو آرٹسٹ سارے ہمارے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، وہ سب پی ٹی وی سے کام کر کے اسٹارٹ ہوئے ہیں، اور وہی اسٹارز ہیں ابھی تک۔ تو میں نے ڈبل مائنڈیڈ ہو گئی تھی میں کہ میں کروں یا نہیں کروں، وہ بھی ایک بہت ہاٹ ٹاپک پہ تھا جو کہ لیاری سے کماڑی تھا۔ ایک ہسٹری تھی بڑی اچھی، ہسٹری اور اسٹوری کر کے انہوں نے بنایا تھا، تو دیٹ واز مائی اسٹارٹ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کافی ویٹ کیا کہ میں نے انتظار کیا، کیونکہ وہ جو کیریکٹر تھا اس میں نے بالکل اپنے آپ کو بلیک बेस लगाया, गेटअप किया, तो सबको ऐसा लगने लगा शायद मैं दिखती ऐसी हूँ. सबको ऐसा लगा. इनफैक्ट मेरे काफी दूर के रिलेटिव्स ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बतू बड़े होके इतनी काली कैसे हो गई. फिर मैंने हम टीवी से फिर सेकंड प्रोजेक्ट किया, वो एक चुभन सी उसका नाम था. तो उसमें कास्ट बहुत अच्छी थी, सोनिया जी थी, हिरा थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़ा अच्छा रहा वो. फिर मैंने रमजान प्ले किया, माय डियर सिंड्रेला नाम है उसका. और अब जो है वो मैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया. बीच में एक प्रोजेक्ट होता है ना, आप किसी चैनल से करते हैं, भाई पैसे चाहिए समटाइम, मतलब एक्टर को कभी कभी पैसों के लिए भी काम करना पड़ता है. तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया, इंशाल्लाह वो ऑन एयर होगा कभी तो आप लोग वो देखेंगे. उसके मीनवाइल मैंने जो है वो ये प्रोजेक्ट साइन कर लिया. तो मैं ये कर रही हूँ और इसके साथ मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है.
8: एक है वो सरप्राइज है.
9: हाँ, हम उसके उसकी शूट हमने स्टार्ट कर दी है, वो भी ग्रीन से ही है. पहले जब मैं मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले मैं एक जॉब करती थी. सो वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, गेस्ट काफ़ी आते थे, इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से होता था. तो वहाँ पे एक मुझे बड़ा शौक होता था, सारे आर्टिस्ट जब आतिफ असलम और ये लोग सब लोग आते थे ना, तो उनको देख कर मुझे शौक होता था कि यार मैं भी ना इस तरह से ना आऊँ तो लोग मेरे साथ पिक्चर्स लें, और ना चले पिक्चर्स ना भी लें लेकिन मैं काम करूँ, मैं टी वी पर आऊँ. तो अब जाहिर सी बात है, अब कैसे आया जाए टीवी पे, क्योंकि मेरे फैमिली में से कोई भी टीवी में नहीं है. तो वहाँ पे एक मर्तबा एक शेफ आई, वो मसाला टीवी या हम टीवी में करती हैं शो, आई गेस रिदा नाम है उनका. अच्छा, तो वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना हेल्प चाहिए और मुझे ना कोई कैब बुक करवा दो. तो मैंने उनको कैब बुक करवा के दी. तो उन्होंने मुझे यूँ गौर से देखा, कहा कि तुम मीडिया में काम क्यों नहीं करती. तो मैंने बोला मेरे तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ ऑडिशंस दो और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जर्नी को स्टार्ट करो, क्योंकि तुम यहाँ पे खड़ो के सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो. तुम ठीक है, तुम क्वालिफाइड हो, चीज़ें कर रही हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर तुम्हारा ख्वाब है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल मुझे नज़र आया है कि तुम कर सकती हो और कॉन्फिडेंस है तो तुम करो. तो वहाँ से मेरा फिर जर्नी स्टार्ट हुआ. समटाइम जब आप बचपन से कुछ सोचते हैं ना
8: तो वो हो जाता है,
9: तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको पूरा करना चाहें तो आप वो कर सकते. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो स्टोरीज हैं, जो जिस तरह की स्टोरीज हैं जो हम लोग वाकई में देखना चाहते हैं, और 90% या 95% पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसके घर से रिलेट करती है सारी स्टोरीज. सास भी होती है उसमें. इसके साथ साथ जो यंग जनरेशन है, जो भी जितने भी लोग हैं उनके साथ भी अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उन टॉपिक्स को भी उठाना चाहिए, उन टॉपिक्स पे भी बात करना चाहिए. अभी रिसेंट मैंने एक ड्रामा जो है वो था, तो आजकल के काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया और कंटेंट कंजम्पशन पे ड्रामा बनना चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से यंग जनरेशन का बड़ा बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन हम लोगों के अंदर एक ये आदत आ गई है कि हम एक रील देखते हैं फिर चेंज करते हैं, दूसरी रील देखते हैं फिर चेंज करते हैं. चेंजिंग हो रही है यहाँ पे रील्स की, उससे आपके इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं ना. एक सैड है, एक हैप्पी है, एक सैड है, एक हैप्पी है. तो उस सब चीज़ों से ना इंसान के दिमाग को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है और वो एकदम स्ट्रेस में जा रहा है. तो इन चीज़ों पे भी बनाना चाहिए ड्रामा के कंटेंट कंजम्पशन कम हो, और या फिर कोई ऐसी लड़की दिखाएं जो कि बहुत कंटेंट देखती है और फिर उसके जो है ना एकदम से उसके दिमाग पे ऐसे असर हो गए और ये और वो, मतलब, और उसको अच्छे तरीके से लिखवा के वो ये टॉपिक दिखाया जा सकता है जिसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है.
8: अच्छा बतूला, आप खुद भी कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करती हैं, आप किसे मजा आता
9: है? मुझे ब्यूटी कंटेंट बनाने का बड़ा शौक है, और अगर मैं अगर हुआ कुछ तो मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूंगी कि मैं डायरेक्शन भी करूं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कि किसी का ना सीन, मतलब कोई खड़ा हो कैरेक्टर और मैं उसको विजुलाइज करके जो है ना वो, मतलब विजुलाइजेशन के बाद मैं उसको जो है ना पूरा डायरेक्ट करूँ. तो मुझे इस चीज़ का शौक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अलग साइड है. बट मेरा जो कंटेंट पे भी मेन फोकस है वो है यूजीसी जो होता है ना, यूजर जनरेटेड कंटेंट, वो बनाऊं और ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाऊं.
8: आपका है फिल्मों का शौक?
9: हाँ है, तो शौक तो मेरा बहुत है. लेकिन अब देखें, समटाइम्स जो है वो आपको आपको जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, दिखने की ज़रूरत होती है, या आप का कोई पैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप जा सकें. तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं. मुझे लगता नहीं था कि गैदरिंग्स और जो है ना वो, मतलब ये कॉन्टेक्स ज़रूरी है मेरे लिए. कॉन्टेक्स ज़रूरी मुझे लगता था नहीं है, और टैलेंट बहुत आगे जा सकता है, लेकिन सम हाउ कॉन्टेक्स जो होंगे ना आपके, तो वो आपको जो है वो रखेंगे मीडिया में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में और अच्छे अच्छे उसमें आगे. ये एक बहुत बिटर ट्रुथ है जिसको हम शायद नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज का।
8: तो अगर रोल मिला फिल्म में आ गई आप, किस तरह का रोल सोचा हुआ है, कैसा करेंगे?
9: मैंने तो दो तीन सोचे हैं।
8: अच्छा।
9: तो जब आप सोचने पे तो पाबंदी नहीं
8: है,
9: सोचने पे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। उसमें मेरा हीरोइन का भी है, पल्लू उड़ाती हुई, आंचल उड़ाती हुई, तैयार होती हुई। उसमें मेरा एक ऐसी लड़की भी है जो कि जिसको शौक है जिमिंग का, उसमें एक ऐसी लड़की भी है जो कि बेताशा मॉडर्न और मगरूर है।
8: अच्छा।
9: जिसको अपने आगे कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसको आगे जाके फिर पता लगता है कि मगरूर होना अच्छी बात नहीं। ये सारे मतलब मैं सोचती हूँ इन सब चीजों के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
7: सितारों की दुनिया में आपने बतूल आबदी की बातें सुनी, जिसकी वीडियो आप SBS उर्दू के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट कौकब जहां ने तैयार की।
6: SBS उर्दू, SBS साउथ एशियन पर।
0: जी सामईन, तो बतूल आबदी की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि ख़ुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। और अब हम पहुंच गए हैं नशरियात के इख्तिताम पर। SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे SBS साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध को ही SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। तो अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में देखिए। प्रोग्रामों के मुंतखब हिस्से आप सुन सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर और वेबसाइट पर भी। उसके अलावा आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद आया। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट या आपकी कोई ऐसी मुनफरद कहानी है जो SBS उर्दू को अपनी नशरियात में शामिल करनी चाहिए, या उस मौजू का अहाता जो आपको पसंद हो SBS उर्दू को करना चाहिए। नशरियात में कैसी मौसीकी शामिल करें, आपको पॉप पसंद है या सूफियाना कलाम, हमदिया कलाम पसंद करते हैं या गीत, ये सब आप हमें बता सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर। और इसके साथ हो रहा है नशरियात का इख्तिताम। जाते जाते दरख्वास्त के दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ अपनी मेज़बान वरदा वक़ार को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। लेकिन नशरियात का कुछ वक्त अभी बाकी है, तो जाते जाते आप सुनिए आपदा परवीन का नारा मस्ताना।

SBS पंजाबी दे न्यूज़ रूम तो मैं हाँ शायना कालरा ते पेश ने 5 जून 2026 दिन शुक्रवार दियां चोणवियां खबरां। विरोधी धिर ने सरकार उत्ते इल्जाम लगाए हन कि सरकार दी 5% डिपॉजिट दे के घर खरीदण वाली योजना तहत स्थाई प्रवासियां नूं वध फायदा हो रहा। सैनेट दे अनुमान मुताबक इस योजना दे विस्तार तो बाद 2022 तो लैके हुण तक 51,000 स्थाई निवासियां ने सरकार दे 5% डिपॉजिट योजना तक पहुंच कीती है। लिबरल नेता एंगस टेलर ने अजिहियां योजनावां नूं सिर्फ आस्ट्रेलियन नागरिका तक सीमित करन दा वादा कीता, जबकि लेबर मंत्री मार्क बटलर ने विरोधी धिर दीआं चिंतावां उत्ते जवाबी हमला करदिआं कहा कि PR धारक भी देश दे वासी हन। ऑस्ट्रेलिया दी हाउसिंग मार्केट नूं लैके ए वी क्यास लगाए जा रहे हन कि गठजोड़ संसद विच विवादपूर्ण कैपिटल गेन्स टैक्स तब्दीलियां नूं रोकण दे लई सैनेट विच ग्रीन्स नाल मिल के काम कर सकदा। अगले साल जुलाई तो नवे घरां लई जायदादां उत्ते नकारात्मक गैरिंग भाव नैगेटिव गैरिंग नूं सीमित करन लई हेठले सदन विच एक बिल पास कीता गया अते महंगाई नाल जुड़ी दर लई पूंजी लाभ टैक्स भाव कैपिटल गेन टैक्स उत्ते 50% दी छोट नूं खत्म कीता गया। हुण जून दे अखीर विच जांच तो बाद सैनेट विच इस उत्ते वोटिंग होवेगी, पर इस नूं पास करवाउण दे लई सरकार नूं ग्रीन्स दे समर्थन दी वी लोड़ है, जो अजे तक यकीनी नहीं है। अते इह वी क्यास लगाए जा रहे ने कि ग्रीन्स हुण गठजोड़ दा साथ वी दे सकदा। उत्थे पेंडू विक्टोरिया विच चाकू दे नाल कीते हमले दा शिकार होण तो बाद एक व्यक्ति गंभीर हालत विच है। पुलिस दा दावा है कि उना उत्ते किशोरां दे एक समूह वल्लों हमला कीता गया सी। पुलिस दा मनना है कि ए व्यक्ति बेंडिगो विच एक गली विच कच्ची नींद सो रहा सी जदों 6 नौजवानां ने उस उत्ते हमला कर दिता। हुण कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां। स्लोवेनिया दी संसद ने सज्जे पासे एक वड्डा बदलाव कीता, जिस नाल उत्थे दे प्रधानमंत्री जनेज जनसा दी अगवाई विच एक नवी रूढ़ीवादी सरकार दी पुष्टि हुई है। जनसा दी स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 होर सज्जे पक्षी पार्टियां नाल गठजोड़ समझौता कीता। 90 मैंबरी इस नैशनल असैम्बली ने मार्च विच होईयां सख्त चोणां तो बाद महीनियां तो चल रहे राजनीतिक रुकावट नूं खत्म करदे होए 49 तों 30 वोटां दे नाल नवीं सरकार नूं मंजूरी दे दित्ती है, जिस विच किसे भी पार्टी नूं शामिल करन लई लोड़िंदा बहुमत नहीं मिलिया। उत्थे ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दा कहना है कि ओ ईरान दे सर्वोच्च नेता नाल मिल के महीनियां तो चल रहे टकराव नूं खत्म करन लई एक समझौता करन लई सम्मानित होणगे। जिक्रयोग है कि ट्रंप नूं दुश्मनां अते सहयोगियां दोवां वल्लों चेतावनियां दा सामना करना पै रहा है कि ईरान युद्ध उत्ते उनां कोल विकल्प खत्म हुंदे जा रहे ने। हुण गल पंजाब दी, जिथे दीआं स्थानक चोणां विच आप भाव के आम आदमी पार्टी सब तो वध सीटां उत्ते वध वोट शेयर लैण विच मोहरी है। राज चोण कमिशन वल्लों अज वख-वख सियासी धिरां नूं मिले वोट शेयर दा ऐलान कीता गया। वेरवियां अनुसार पंजाब विच 8 नगर निगमां, 75 नगर कौंसलां अते 19 नगर पंचायतां विचों आप 8 नगर कौंसलां अते 1 नगर पंचायत विचों 50% तों वध वोट प्राप्त करन विच सफल रही। दूजे नंबर उत्ते रहण वाली कांग्रेस किसी भी नगर विच 50% वोट शेयर दा अंकड़ा पार नहीं कर सकी। इस दे नाल ही खत्म हुंदा है खबरां दा अज दा सिलसिला। देश दुनिया अते भाईचारे नाल जुड़ियां खबरां लई सुनदे रहो SBS पंजाबी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 5 जून 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे. और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक आपका साथ निभाऊंगी कुछ खास खबरों और गानों के साथ. आज के कार्यक्रम में बात करेंगे उस दवाई की जिसका नाम इन दिनों दुनिया भर में चर्चा में है, ओज़ेम्पिक. आखिर ये ओज़ेम्पिक क्या है, शरीर में कैसे काम करती है और क्या ये वास्तव में लंबे समय तक वजन कम करने में मदद कर सकती है. इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बदलते साउथ एशियन वेडिंग कल्चर पर भी होगी खास चर्चा. शादियां अब केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बनती जा रही हैं, जहां सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग सोशल मीडिया अपनी भूमिका निभाता है. तो इस बदलती तस्वीर को आज ध्यान से समझेंगे. इसके अलावा शो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती आबादी के ऊपर. नए आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 28 मिलियन के आंकड़े के को पार कर चुकी है और इस वृद्धि में प्रवासन की बड़ी भूमिका है. पहली बार भारत में जन्मे लोग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए हैं और इसी पर एक खास रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी. इसके अलावा आपको बता दूं कि फ्राइडे है तो हमारी भारत से खबरें भी होंगी ही और आज का सवाल भी आपको बता देती हूं. तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बसने के दौरान, यानी जब आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है. क्या था आपका सबसे बड़ा चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करते समय, बताएं मुझे. नंबर है 0439799767. इसके अलावा आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने भी लेकर आऊंगी जो कि शो के दौरान आपके लिए बजाती रहूंगी, लेकिन आपको मुझे 0439799767 पर बताते रहना है कि आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं आज का न्यूज़ फ्लैश. प्रस्तुत है 5 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. फेडरल सरकार की हाउसिंग सपोर्ट योजना को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है. लेबर मंत्री मार्क बटलर ने विपक्ष की उन चिंताओं को सख्ती से खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि स्थायी निवासियों को इस योजना का अनुचित लाभ मिला है. संसदीय समिति की सुनवाई में ये सामने आया है कि 2022 से अब तक करीब 51,000 स्थायी निवासियों यानी परमानेंट रेसिडेंट्स ने सरकार के 5% डिपॉजिट प्रोग्राम का लाभ लिया है जिसे लेबर सरकार ने योजना के विस्तार के बाद लागू किया था. विपक्षी नेता एंगस टेलर का कहना है कि इस योजना का लाभ केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक सीमित होना चाहिए. इस बीच चर्चा ये भी तेज है कि कोएलिशन ग्रीन्स के साथ मिलकर संसद के ऊपरी सदन में सरकार के प्रस्तावित टैक्स सुधारों को रोकने की कोशिश कर सकता है. प्रस्तावित बदलावों में नेगेटिव गियरिंग को लेकर नए घरों तक सीमित करना और कैपिटल गेन टैक्स पर 50% छूट को हटाकर महंगाई से जुड़े रेटिंग सिस्टम में बदलना शामिल है. आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर संसद में बहस और तेज होने की संभावना है. वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे ताकि महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत की जा सके. हालांकि एक्सपर्ट्स और राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ये संघर्ष, जिसे उन्होंने शुरुआत में एक त्वरित सैन्य कार्रवाई बताया था, अब लंबे समय से जारी गतिरोध में बदल चुका है. इसी बीच अमेरिका ने क्यूबा के कई शीर्ष अधिकारियों पर
3: प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें राष्ट्रपति मिगेल डियास कैनल और रक्षा मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इन प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई जरूर एक चुनौती है, लेकिन सरकार के कड़े आर्थिक फैसले सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में अधिकारियों ने एक अनोखी कार्रवाई के तहत हजारों कॉकरोच जब्त किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाटर के अनुसार बाथल स्ट्रीट के एक कमर्शियल ब्रीडिंग फार्म से लगभग 100,000 कॉकरोच जब्त किए गए हैं, जिसमें डुबिया और मेडागास्कर हिसिंग प्रजातियां शामिल हैं। ये कार्रवाई पर्यावरणीय नियमों और व्यावसायिक मानकों के उल्लंघन की जांच के तहत की गई है। वहीं विक्टोरिया के ग्रामीण इलाके से एक गंभीर हमले की खबर सामने आई है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति को कथित तौर पर किशोरों के समूह ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति बेघर था और उसे बेडिंगो के एक सड़क पर सोते समय निशाना बनाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ जारी है। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी एक अलग मामले में 3 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने एक वांछित बाइकर को देश से बाहर ले जाने की कोशिश की, जो कथित रूप से एक आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। वहीं बात करें भारत की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। एबीएस के नए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 28 मिलियन तक पहुंच गई है और ये लगभग हर 1 मिनट 15 सेकंड में एक व्यक्ति की दर से बढ़ रही है। इस तेज वृद्धि का मुख्य कारण माइग्रेशन है और पहली बार भारत में जन्मे लोग अब देश का सबसे बड़ा समुदाय बन गए हैं। इस अंश में हम भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई निवासियों से जुड़ रहे हैं, ये समझने के लिए कि वे इस तेज जनसंख्या वृद्धि को कैसे देखते हैं।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती जनसंख्या के बारे में। तो इस जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे असली वजह क्या है, क्या ये बढ़ती जन्म दरें हैं या फिर नेट ओवरसीज माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी ABS के अनुमान के अनुसार देश की जनसंख्या अब 28 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। ABS की पॉपुलेशन क्लॉक के मुताबिक ये महत्वपूर्ण पड़ाव इस साल 2 जून को दर्ज किया गया। ये अनुमान 1 जुलाई 2025 को तय की गई जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। इस गति से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी में औसतन हर 1 मिनट 15 सेकंड में एक व्यक्ति जुड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण नेट ओवरसीज माइग्रेशन बताया जा रहा है। मार्च में जारी ABS के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक के 12 महीनों में देश की जनसंख्या में हुई कुल वृद्धि का 73% हिस्सा यानी लगभग 3,11,000 लोग नेट ओवरसीज माइग्रेशन के कारण बढ़ा। वहीं नेचुरल इंक्रीज अर्थात शिशु जन्मों की संख्या में से मृत्यु की संख्या घटाने पर जो वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या वृद्धि का 27% यानी लगभग 1,12,600 लोगों के बराबर रही। मार्च में जारी ABS के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक के वर्ष में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की आबादी 2.2% बढ़ी यानी लगभग 66,000 लोगों की वृद्धि हुई। क्वींसलैंड और विक्टोरिया दोनों की जनसंख्या में 1.7% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान क्वींसलैंड में लगभग 97,300 और विक्टोरिया में 1,22,000 लोग जुड़े। नॉर्दर्न टेरिटरी की आबादी 1.4% बढ़ी जो लगभग 3,700 लोगों के बराबर है, जबकि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी यानी ACT में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी करीब 6,500 लोग बढ़े। साउथ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में 21,100 लोगों की वृद्धि हुई, जो 1.1% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं तस्मेनिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, वहां आबादी केवल 0.3% बढ़ी, यानी लगभग 1,700 लोग जुड़े। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 27 मिलियन की जनसंख्या का आंकड़ा पार कर लिया, और ये उस समय हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खुलने के लगभग 2 साल बाद नेट ओवरसीज माइग्रेशन महामारी के दौरान आई गिरावट से फिर से बढ़ने लगा। अनुमानों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2031 तक 30 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कितने लोग बसते हैं? 30 जून 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 8.83 मिलियन विदेश में जन्मे लोगों में से करीब 9,71,020 लोग भारत में पैदा हुए हैं। ये संख्या पिछले 4 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासन के लगातार और स्थिर रूप से बढ़ने को दर्शा रही है। ये वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और कुशल प्रवासन यानी स्किल्ड माइग्रेशन जैसे रास्तों के कारण हुई है। लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल समाज बन रहा है, वहीं उसी समाज की सच्चाइयों से और आर्थिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। होबार्ट से एमिन जाफरी हमें बताती हैं।
5: मेरा नाम एमिन जाफरी है, मैं तस्मानिया में पिछले 8 साल से रहती हूँ। आई एम अ वेरी एक्टिव सिटीजन हियर। और जो अभी जो एबीएस ने जो अपने जो डेटा रिलीज किया है, हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो है वो 28 मिलियन हो गई है। लेकिन आप ये देखें कि तस्मानिया में जो है वो सिर्फ 0.3% इंक्रीज आया है। और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की तरफ देखें तो ऑफकोर्स ओवर द डेकेड थिंग्स हैव चेंज्ड। कम्युनिटी आ रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, लेकिन तस्मानिया में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से लोग तस्मानिया छोड़कर भी जा रहे हैं। मतलब जैसे हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तस्मानिया का जनरली जो एवरेज वेज है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज वेरी लो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो नहीं रहा है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी कंसर्निंग, क्योंकि तस्मानिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे वर्कफोर्स।
4: वहीं मेलबर्न के रहने वाले नितिन साबी हमें बताते हैं।
6: अभी का डाटा ये कहता है कि इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है पिछले 10 सालों में। जो पहले अराउंड 4.5 लाख थी, अब वो नियरली 1 मिलियन हो गई है। और उसमें यंगेस्ट मेजर माइग्रेशन ग्रुप है इंडियन पॉपुलेशन का, जिनकी एवरेज एज 34 साल की है और सबसे हाईली एजुकेटेड भी हैं। स्किल्ड माइग्रेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के लिए। पर कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंतावश चीज़ें भी हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और आई वुड से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर हम देखें आजकल इंजीनियर्स शेल्फ स्टैकिंग कर रहे हैं, ओवरसीज क्वालिफिकेशन को तो जैसे ऑस्ट्रेलिया मानता ही नहीं है। उसके अलावा हाउस क्राइसिंग कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका रिजल्ट आपने देखा ही है। अभी टैक्स रिफॉर्म्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था आज से 21 साल पहले, एंड आज हमने मेहनत के साथ, एजुकेशन के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फेयर गो हमें दिया है और आगे भी देते रहेगा, पर हमारा कंसर्न ये है कि आज हमें सिस्टम को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को जागरूक रखना है, समझाना है कि हर आदमी एक अपनी स्ट्रेंथ्स लेके आता है और इकट्ठे स्ट्रेंथ में हम ऑस्ट्रेलिया को आगे लेके जा सकते हैं।
4: तो जहां माइग्रेशन को लेकर हाउसिंग क्राइसिस की बात की जा रही है, वहीं महत्वपूर्ण स्किल्ड लेबर की कमी को पूरा करने में इसकी भूमिका पर भी चर्चा तेज हो रही है।
2: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, और इसी से जुड़ा एक सवाल मैंने आज आपसे पूछा है। मैंने पूछा है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करे थे तो आपको किस तरह की चुनौतियों या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। भेजें अपने जवाब मुझे, नंबर है 04397997667। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio.
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
5: यहाँ जाओ दादिया. जुम्मन हाल में.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
12: sbs.com.au/audio.
13: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. वक्त हो रहा है 5:17, और आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर हमारे सभी अंश और कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं. साथ ही हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और हमें फॉलो कर लें. चलिए, और भी खूब सारी बातें करेंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा गाना लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है हमारी इंडिया रिपोर्ट में.
14: भारत और वेनेजुएला ने अपने आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर सहमति जताई है. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. गुरुवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई. इस दौरान संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय साझेदारी को गति देने पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई. द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया. मंत्रालय में सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि एनर्जी सेक्टर में साझेदारी बढ़ रही है. वेनेजुएला तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर चुका है.
15: वेनेजुएला इज पोजेसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. द इंडियन इकोनॉमी इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड विल हैव अ स्टेबल डिमांड ग्रोथ फॉर मेनी इयर्स टू कम. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the third largest supplier this month. So quite naturally, today's discussions focused on forging an energy partnership. What did emerge from the interaction of the two leaders was that Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. They see India as a stable demander for many years to come.
14: द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की है. इस बारे में रुद्रेंद्र टंडन बताते हैं.
15: Venezuela is a very large country which is resource rich, has talented, hardworking people. That is now showing the first signs to moving to a path of sustained growth. So there are huge opportunities, not just in the energy sector, but also in areas like mining, in areas like animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals. These two were discussed. And the whole idea was to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully and a new partnership in these areas can be forged.
14: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन

0: परिवर्तन के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र की सागरमाला परियोजना से जुड़ने की घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले सरकार के समय सागरमाला प्रोजेक्ट से दूर रहने की आलोचना की।
1: पिछले सरकार जिस तरीके से भारत सरकार का इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट जिनका बेनिफिट दूसरा प्रदेश ने लिया है, हमारी प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को वंचित हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल इल मोटिव और नॉन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत क्षति हो गया है। वो सब पास्ट इज पास्ट, नाउ हम लोग को गो हेड करना पड़ेगा। हम लोग आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उन्होंने सागरमाला 2 प्रोजेक्ट का इजाजत दे दिया, इसलिए हम लोग बहुत आभारी हूँ। सागरमाला 1 का जो बेनिफिट दूसरा प्रदेश को मिला है, पश्चिम बंगाल की पिछले सरकार उसका बेनिफिट हमारी प्रदेश की जनता को नहीं दिया है।
0: कोलकाता में वाटर मेट्रो सेवा भी शुरू की जाएगी। देश के 18 शहरों में यह सेवा पहले से ही है। राज्य में चुनाव के बाद भी राजनीतिक गहमा गहमी कम नहीं हो रही है। सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी में फूट बढ़ गई है। 80 में से लगभग 60 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जैसा कांग्रेस पार्टी के साथ किया था, अब वह उन्हीं के साथ हो रहा है।
2: और जिस ढंग से ममता बनर्जी पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिए थे और खत्म करने की कागर में पहुंच देने की कोशिश किए थे, उसी तरह आज इतिहास पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को खेल को खत्म कर रहे हैं। उस समय ममता बनर्जी खुद को डीजे बजाते हुए खिलवाड़ बताते हुए मैदान में उतरे थे, आज भी ये नया खेल शुरू हो गए। उस समय रेफरी या अंपायर थी ममता बनर्जी, आज खेल की अंपायर और रेफरी बने बीजेपी पार्टी। तो ये एक मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे की एक नया मॉडल बंगाल में चालू हो रहे हैं।
0: अधीर रंजन का दावा है कि टीएमसी के ज्यादातर आरोपी नेता भाजपा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जुड़ने की सलाह दी।
2: मैं जरूर ये सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अगर कुछ करना है तो सब कांग्रेस में शामिल हो जाइए। कांग्रेस आपके लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ कि सारे आरोपित जो नुमाइंदे हैं सारे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में सीधे तरीके से शामिल ना होते हुए भी ये अलग एक मंच बनाते हुए बीजेपी की मदद लेते हुए ही ये लोग शामिल हो रहे हैं। ये सबके लिए सबके सामने ये स्पष्ट।
0: पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है। चुनाव में हार के बाद डीएमके और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता टूट गया है। कांग्रेस पार्टी टीवीके सरकार को समर्थन देकर राज्य की सरकार में शामिल हो गई है। इससे नाराज डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। 8 जून को होने वाली बैठक में डीएमके के अलावा कुछ अन्य दल भी नदारद रह सकते हैं। और अब चर्चा पर्यावरण दिवस की, जो आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के अलावा जल जंगल को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जाएगा। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान की जियो टैगिंग के द्वारा निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक प्लास्टिक की जगह बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए आज से एक पहल शुरू की जा रही है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। और अंत में बात मानसून की, जिसने भारत में दस्तक दे दिया है। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला यह मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है। अब अगले एक हफ्ते केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
3: तो दोस्तों ये आपने सुनी खबरें भारत से, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सोचा कि आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ।

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Sport. खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह साइकिलिंग मोटर स्पोर्ट विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ sbs.com.au/sport पर जाएं।
6: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है sbs.com.au/guide पर जाएं।
7: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। दोस्तों, आज दुनिया भर में ओजेम्पिक की बात हो रही है, लेकिन आखिर ये दवाई क्या है और वजन कम करने के लिए ये शरीर में कैसे काम करती है? क्या ये भूख और खाने की आदतों को प्रभावित करती है? इसकी सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी उपलब्ध है और क्या ये अपने दम पर लंबे समय तक वजन घटाने में मदद कर सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस अंश में जुड़ रही हैं मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा वर्मा।
9: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। आज के समय में वजन कम करना दुनिया भर में एक आम चर्चा का विषय बन गया है। मोटापा यानी अधिक वजन की समस्या के कारण लोग अलग अलग तरह के विकल्प अपना रहे हैं, लेकिन तेजी से वजन कम करने वाली दवाओं की बात करें तो ओजेम्पिक का नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। ओजेम्पिक आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसे मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए विकसित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में वजन घटाने में इसकी प्रभावशीलता के कारण इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। लेकिन आखिर ओजेम्पिक क्या है और ये वास्तव में कैसे काम करती है? ये दवा भूख पर कैसे असर डालती है? इसकी सुरक्षा के बारे में हमें क्या पता है और क्या ये अपने आप लंबे समय तक वजन घटाने में सच में मदद कर सकती है? इस दवा को बेहतर समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा वर्मा, जिनसे हम इसके फायदे और जोखिमों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं माना जाना चाहिए। तो जुड़ते हैं डॉक्टर शिल्पा वर्मा से।
10: SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिल्पा वर्मा जी।
11: ओह, थैंक यू।
10: तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि ओजेम्पिक है क्या और ये कैसे काम करती है।
11: या यू राइट, ये ओजेम्पिक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इट इज अ ड्रग जो वेट मैनेजमेंट के लिए ऐसे बहुत पॉपुलर हो गया है. एक्चुअली ये ड्रग टाइप 2 डायबिटीज यानी जो अडल्टहुड में डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज किया गया था. और उसके अलावा इट वाज सीन कि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा इफेक्ट कर रहा था. सो इसलिए इट्स बिकम यूजफुल फॉर बोथ वेट लॉस भी और टाइप 2 डायबिटीज. तो एक तो कैसे एक्शन करता है कि ये अपने बॉडी की एक जो GLP-1 करके एक एंजाइम रहता है, वो हार्मोन रहता है, वो अपने पेट में प्रोड्यूस होता है. एंड दिस इंजेक्शन वही हार्मोन है जो हाई डोज में दिया जाता है. एंड वो हार्मोन का इफेक्ट ऐसे है जो हम बोलते हैं ना अपना गट और ब्रेन का कनेक्शन रहता है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. तो गट में ये हार्मोन बनता है और वो ब्रेन में एक्शन करता है जिससे लोगों की एपेटाइट सप्रेस हो सकती है एंड क्रेविंग्स कम होते हैं. जो फूड नॉइज हम बोलते हैं कि स्नैक्स करना है ये वो, उससे कम होके वो वजन कम कराता है. अदर देन दैट कुछ एपेटाइट लो भी हो जाता है इसलिए वजन कम हो सकता है. एंड थोड़े और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी होते हैं ब्रेन के हार्मोन्स में जिसके वजह से वजन कम होता है.
10: तो जी जो आप समझा रही हैं बेसिकली ये ड्रग लेने से आपको आपकी बॉडी ये कहती है, ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि आपको भूख नहीं लग रही है, मत खाओ.
11: हाँ, और थोड़ा सा खाया तो फुल सटाइटी बोलते हैं जो पेट भर जाता है जल्दी. जो हेल्थ इशू ओबेसिटी से ही इतनी हेल्थ इश्यूज हो सकती है ना, इसीलिए तो नाउ वी आर ट्राइंग कि वी ट्रीट इट लाइक जैसे कि ये क्रॉनिक डिजीज है तो उसके लिए ये इंजेक्शन इज यूजफुल ओजेम्पिक टू ट्रीट.
10: जैसे जनरली कहा जाता है अगर आप ओबेस हैं तो आपको हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, आप यू आर मोर वल्नरेबल टू हेल्थ कंडीशन. मगर ऐसे भी लोग हैं जो ओबीस हैं और उनको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, जो बिल्कुल ठीक हैं.
11: वो तो दैट कैन बी, इट कैन ऑलवेज एग्जिस्ट ऐसे. बट जनरली आप देखा जाए तो जो वेट एक्सेस होता है उनको हार्ट और ऑल अदर कंडीशन जरूर, स्लीप एपनिया बोलो तो ऐसे सारे कंडीशन हो सकते हैं ज्यादा प्रमाण में.
10: जी जी. तो जो ओजेम्पिक ड्रग है ये सिर्फ डायबिटिक लोगों को, जो इससे डायबिटीज है जिनको, उन्हीं को दी जाती है या अब जो ओबीस है उनको भी दी जा रही है?
11: या सो ये जो है ओजेम्पिक उसे वही ड्रग दूसरे नाम से भी मिलता है और उसको बोलते हैं वीगोवी. और ये दोनों ड्रग एक ही दोनों मेडिकेशन जो है एक ही ड्रग है उनमें दोनों में. और वो ड्रग उसको सेमाग्लुटाइड बोलते हैं. उससे डायबिटीज का भी इम्प्रूवमेंट होता है, वेट में भी इम्प्रूवमेंट होता है. सो दे आर गिवन दोनों चीजों के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए भी और डायबिटीज. बट इट हैज टू बी गिवन वेरी स्पेसिफिकली. जैसे ऑस्ट्रेलिया में ओजेम्पिक दिया जाता है सिर्फ डायबिटीज को क्योंकि इट्स अवेलेबल, जो हम गवर्नमेंट के PBS सब्सिडी में बोलते हैं ना, तो उससे वो ओजेम्पिक अवेलेबल होता है. बट यू हैव टू हैव डायबिटीज फॉर दैट. और जिनकी डायबिटीज कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए वो ड्रग दिया जाता है. और उसके अलावा दूसरी इफेक्ट, अच्छी इफेक्ट होती है कि वेट लॉस भी होता है. व्हाइल द अदर ड्रग व्हिच इज वीगोवी, वो अभी तक नहीं हुआ है अपने गवर्नमेंट सब्सिडी पे PBS पे, बट हो सकता है आ जाएगा क्योंकि थोड़ी सी उसकी जांच चालू है. एंड दैट इज द वन जो दिया जाता है सिर्फ ओबेसिटी, यू डोंट हैव टू हैव डायबिटीज फॉर इट.
10: अच्छा जी.
11: बट ओबेसिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए. And that is available private script पे, so ज़्यादा महंगा रहता है वो.
10: जी. तो ये जो ओजेम्पिक ड्रग है ये क्या आपके शुगर लेवल्स भी कम करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्किनी है और जिसको डायबिटीज है वो भी ओजेम्पिक ले सकता है जस्ट टू कंट्रोल देयर शुगर? और
11: टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा देते हैं. टाइप 1 में अभी तक फुल इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए हैं बट ट्रायल्स चालू है. बट जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं और वो अगर बहुत ज्यादा वेट का प्रमाण नहीं है उनका बट शुगर्स बहुत बढ़ी हुई है, स्टडीज किए हुए हैं ओजेम्पिक के उन ऐसे लोगों में, और उनकी शुगर इम्प्रूव हुई है. अच्छा. उनमें वेट लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है इस मेडिकेशन से उन इस सिचुएशन में. बट अगेन अपने पीवीएस पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं कि किनको अलाउड है किनको नहीं, इसलिए डॉक्टर के साथ ही बात करके वो लेनी पड़ती है.
10: डॉक्टर शिल्पा हमें ये भी बताएं इसके साइड इफेक्ट्स जो ले रहे हैं उनको क्या देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के उनको.
11: सो साइड इफेक्ट्स इसके काफी हो सकते हैं, बट देर आर लार्ज, इतने जन यूज कर रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड कि देर इज काफी सारे साइड इफेक्ट्स नए आते रहते हैं. हाउएवर सबको नहीं होते हैं वो साइड इफेक्ट्स. मेन थिंग है नौजिया, और उस नौजिया से भी बोलते हैं कि यू नो एपेटाइट कम हो जाती है तो वजन भी कम होता है, बट दैट्स नॉट द ओनली मैकेनिज्म. दूसरी चीज है कि टमी में गट में अपने काफी यू नो कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, यू नो जलन लाइक रिफ्लक्स
10: जी,
11: दोस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग. फिर दूसरी चीजें जो है डायबिटीज में स्पेशली आंखों का जांच करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, और वो जो आपने आंखों का पर्दा रहता है उसपे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें चेंज हो सकता है और वर्सनिंग हो सकता है. तो इसीलिए आई चेकअप करना जरूरी है उसके पहले और लेते हुए भी. और भी पैंक्रियाटाइटिस करके एक चीज है जो अपना पैंक्रियास करके एक ऑर्गन रहता है
10: जी,
11: उसके इन्फ्लेमेशन होने से वो पेट में सिवियर पेन या यू नो उल्टी और नौजिया ऐसे हुआ तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो भी है. एंड कई लोगों को गॉल स्टोन्स बोलते हैं ना
10: जी,
11: स्टोन्स, वो रिस्क बढ़ सकती है उनमें.
10: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा हमसे आज जुड़ने के लिए और हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए.
11: थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर.
8: तो दोस्तों ये अंश आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं 0439799767 पर. और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और आपको कुछ बढ़िया से गाने भी सुनाऊंगी. सुनते रहें SBS हिंदी.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
12: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
5: SBS Hindi हर समय उपलब्ध है. जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें. sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS Audio app डाउनलोड करें. अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है.
8: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो दोस्तों इस आने वाले अंश में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जो शादी है वो केवल एक समारोह नहीं लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है. इसमें सोशल मीडिया का भी एक नया रोल आ गया है, किस तरह से सिनेमेटोग्राफी इसमें देखी जा रही है. इन सभी बातों को विस्तार से समझने के लिए इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आ रही हूँ नबील हसन के साथ.
13: ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन कम्युनिटी तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही शादियों का पूरा अंदाज भी बदल रहा है। इंडिया में शादियां हमेशा से ग्रैंड और बेहद रौनक भरी रही हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में बड़ी साउथ एशियन डायस्पोरा के साथ वही वाइब यहां भी रिक्रिएट की जा रही है। आज शादियां सिर्फ एक ट्रेडिशनल सेरेमनी नहीं रह गई बल्कि ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बन चुकी हैं जिसमें सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया रील्स, डिजाइनर आउटफिट्स और पर्सनलाइज स्टाइलिंग की बड़ी भूमिका है। SBS हिंदी पर मैं हूँ नबील हसन। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती साउथ एशियन वेडिंग इंडस्ट्री की और समझेंगे कि कैसे बदल रही हैं कपल्स की एक्सपेक्टेशंस, क्या हैं नए ट्रेंड्स और किस तरह ये सेक्टर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रॉबी से, जो एक वेडिंग स्टोरी टेलर हैं। रॉबी और उनकी टीम वेडिंग्स को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच में डॉक्यूमेंट करते हैं। उन्होंने पिछले दो डेकेड्स में खासकर साउथ एशियन वेडिंग फोटोग्राफी को ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व होते हुए देखा है।
14: साउथ एशियन वेडिंग में फोटोग्राफी मतलब पहले था कि एक फॉर्मल एल्बम, पूरी फैमिली की पोज, तस्वीरें और एक USB में सारा डाटा। फैमिलीज बस यही चाहती थी, लेकिन अब सीन बिल्कुल ही अलग है। आज कपल खुद से रिसर्च करते हैं, पिंटरेस्ट बोर्ड बनाते हैं, रेफरेंस लाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रिफाइंड हो गई हैं। पहले सिर्फ पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि फोटोग्राफर कौन होगा, अब ब्राइड और ग्रूम की अपनी विजन होती है। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। आज अगर आप सिर्फ फोटोज डिलीवर करते हो तो आप पीछे रह जाते हो। कपल चाहते हैं कि एक 3-4 मिनट का सिनेमैटिक ट्रेलर हो जो उनकी लव स्टोरी को एक शॉर्ट फिल्म की तरह बताए। सोशल मीडिया में इस डिमांड को और बढ़ा दिया है।
13: क्या आपको लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्रोफेशन बन रही है जिसमें क्रिएटिव लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज हैं?
14: मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पहले लोग फोटोग्राफी को एक साइड गिग समझते थे, कोई भी कैमरा लेके निकल पड़ता था, लेकिन आज एक ये सीरियस क्रिएटिव प्रोफेशनल, लोग डेडिकेटेड कोर्सेज करते हैं, गियर में कई हजारों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, अपना फिर ब्रांड बिल्ड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली यंग साउथ एशियन प्रोफेशनल अब इस फील्ड में फुल टाइम करियर देख रहे हैं। ये जनरली एक्साइटिंग टाइम है पूरी इंडस्ट्री के लिए।
13: जी अच्छा, एक जनरल सेंस के लिए साउथ एशियन वेडिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रफली कितना खर्च करते हैं और क्या ये कॉस्ट बढ़ रही है या कंपटीशन के चक्कर में कम हो रही है?
14: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली स्पीकिंग, एक डिसेंट साउथ एशियन वेडिंग पैकेज ऑस्ट्रेलिया में रफली 5,000 से लेके 15,000 या उससे भी ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन की कवरेज आवर्स, टीम साइज और डिलीवरेबल्स। और यहाँ क्वालिटी के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। जो प्रोफेशनल सीरियसली काम कर रहे हैं, जैसे सिनेमैटिक प्रोडक्शन और एरियल शॉट्स, सेम डे एडिट्स एंड प्रीमियम एल्बम्स, उनके रेट्स नेचुरली हायर हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन भी है और कुछ लोग प्राइस कम करके काम भी लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कपल समझते हैं कि ये एक बार का मोमेंट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
13: वेडिंग एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फैशन और स्टाइलिंग भी है। इस पर हमने बात की आयुषी से, जो ऑस्ट्रेलिया में एक लग्जरी इंडियन एथनिक मल्टी डिजाइनर स्टोर रन करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे अब हर सेलिब्रेशन में एक नहीं बल्कि मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और वेडिंग फैशन अब ज्यादा पर्सनलाइज और एक्सपीरियंस ड्रिवन हो गई है।
15: आई फील जैसे आपने कहा कि पहले कपल्स एक या दो आउटफिट लिया करते थे, बट आई फील कि ब्राइडल ट्रूजो जो एक शब्द है जो कि बहुत समय से चला आ रहा है, स्पेशली इन आवर कल्चर, इन आवर साउथ एशियन कल्चर, शादी का जोड़ा, विदाई का जोड़ा, ये सारी चीजें बहुत ही ऑथेंटिकली, स्ट्रॉन्गली हमारे कल्चर में हमेशा से रही हैं। आई फील इज जस्ट द विजिबिलिटी पार्ट कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम देख सकते हैं लोग क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके कारण ऑफकोर्स एक एडवांसमेंट जरूर आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा से ये सारी चीजें रही हैं इन आ कल्चर। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखें तो पहले भी विदाई का जोड़ा अलग होता था, इनफैक्ट मुंह दिखाई का, पहली रसोई का, हर चीज हमेशा से होती थी, बट ऑफकोर्स अब फैशन में जो एक प्रोग्रेशन आ गया है उसके कारण अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, अब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग पोस्ट करते हैं उन आउटफिट्स के बारे में।
13: आयुषी, आपके एक्सपीरियंस में ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन कपल्स अपने आउटफिट्स में ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का बैलेंस कैसे बनाते हैं?
15: आई फील कि जैसे कि एक ब्राइड आती है, उसे पहनना है एक बहुत बहुत ही प्यारा कल्चरल ट्रेडिशनल लहंगा जो उन्होंने बचपन से देखा हुआ है, फैशन में देखा हुआ है सबको पहनते हुए, लेकिन उसका जो कलर है, इफ शी चेंजेस इट टू अ नॉन ट्रेडिशनल कलर लाइक रेड को हटाकर कोई पेस्टल कर लिया, या उसका ब्लाउज कट डिफरेंट कर लिया, या हल्दी मेहंदी में सलवार सूट पहनने के जगह जंप सूट पहन लिया बट उसका कलर सेम रखा येलो या ग्रीन, तो वो जो एक प्यारा सा ब्लेंड निकल कर आता है दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत फ्रेश एक आउटलुक दिखता है एंड आई फील वो बहुत ज्यादा हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में हम देखते हैं।
13: अच्छा, डिजिटल एरा में अब कपल्स इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम रील्स और ट्रेंडिंग लुक्स को काफी फॉलो करते हैं, क्या आपके पास भी ऐसे रिक्वेस्ट आती है जहाँ लोग एग्जैक्ट लुक या स्टाइल रिक्रिएट करना चाहते हैं?
15: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं एंड दैट इज एक्चुअली आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन है क्या, जब ब्राइड या कोई ग्रूम आते हैं फॉर द ब्राइडल आउटफिट और फॉर द इवेंट्स आउटफिट, एंड कई बार ऐसा होता है कि दे हैव लाइक एन एग्जैक्ट फोटो कि हाँ मुझे बिल्कुल यही लुक चाहिए, यही हेयर स्टाइल चाहिए एंड इट्स ब्यूटीफुल कि अच्छा ठीक है दे आर प्रिपेयर्ड, दे विजुअलाइज्ड इट एंड वो क्लियर है, बट ऑल्सो ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चीज आपके सामने है उसे आप ट्राई करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि यू नेवर नो, आपने जो फोन पे देखा होगा वो किसी पे अच्छा लगा होगा लेकिन आप पे कुछ और ही बिल्कुल अच्छा लगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है ट्राई करने के लिए, तो मैंने ऐसे देखा है कि ब्राइट लेकर तो कुछ completely different आई है, लेकिन वो लेकर कुछ completely different गई है।
13: जब बात होती है large scale weddings की, तो planning और execution भी उतना ही जरूरी हो जाता है। इस पर हमने बात की Melbourne based wedding planner गुनीत से, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन वेडिंग्स के बढ़ते स्केल के बारे में अपनी राय रखी।
16: ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन वेडिंग्स का स्केल काफी इवॉल्व हुआ है, आज कपल सिर्फ वेन्यू और केटरिंग पर फोकस नहीं करते बल्कि ओवरऑल गेस्ट एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान है और वो काफी इन्वेस्ट भी इस पर कर रहे हैं, प्लस मैं देख रही हूँ कि डेकोर और स्टाइलिंग पर भी काफी फोकस बढ़ा है, पर्सनलाइज थीम्स ताकि हर फंक्शन का अपना यूनिक लुक और फील हो, ब्यूटिफुली डिजाइंड स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशंस भी हो रही हैं, एंड अगर आप दूसरी तरफ देखें फोटोग्राफी पर देखें तो कपल्स चाहते हैं कि उनकी वेडिंग स्टोरी ब्यूटिफुली कैप्चर्ड हो और वो मेमोरीज लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकें, फैशन साइड पर भी डिजाइनर एथनिक वेयर और कस्टम स्टाइलिंग पे काफी फोकस हो रहा है आजकल, अगर आप देखें पहले यू नो ब्राइडल ड्रेस जब ब्राइड अपनी ड्रेस पहनती थी तो पिनअप यू नो कोई भी कर देता था, बट आजकल अब स्टाइलिंग प्रोफेशनल्स आ गए हैं जो अच्छे से ड्रेसअप पिनअप करेंगे, आपकी ज्वेलरी सेट करेंगे, सो इन चीजों का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ओवरऑल कपल्स उन एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो उनकी सेलिब्रेशन को यूनिक बनाए और गेस्ट के लिए भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करें। इसी ट्रेंड को देखते हुए हम पिछले 3 सालों से वेडिंग शोकेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां कपल्स को वेडिंग इंडस्ट्री के लीडिंग वेंडर्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स और फ्रेश आइडियाज एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने और कनेक्ट करने का मौका मिलता है। 21 जून को पुलमन अल्बर्ट पार्क में भी एक शोकेस हमने ऑर्गेनाइज करा है विच कैन बी वेरी हेल्पफुल कपल्स के लिए जो अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं।
13: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
8: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आए थे नबील हसन और ज़रूर बताएं हमें 04397997667 पर कि ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी है। इसके अलावा एक संदेश मुझे आया है लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। आज मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में बसते समय आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पर हुई, जिसका जवाब इन्होंने दिया है और लिखती हैं, माय हस्बैंड्स बिगेस्ट चैलेंज वाज अंडरस्टैंडिंग slangs and mine was not finding good halal food options. तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब आप भारत से ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो खान पान और सभी तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और वक्त लगता है समझने में कि कहाँ पर आपके लिए बहुत सही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और जो जहाँ तक भाषा की बात है वो तो मुझे लगता है अभी भी मैं रोज़ कुछ नया समझ ही रही हूँ, सुन ही रही हूँ. तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार से जब भी आप अपना संदेश मुझे भेजें तो अपना नाम ज़रूर लिख दें. और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको कुछ बढ़िया से गाने सुनाने का और क्योंकि आज बात हुई है शादियों की तो सोचा उसी वाइब से संबंधित आपको एक गाना सुनाती हूँ.

दोस्तों एक और संदेश मुझे आया है जफर जी की ओर से, जो लिखते हैं, भव्या जी थैंक्स फॉर गुड एंड बैलेंस्ड प्रोग्राम विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अपना फेवरेट गाना भी बता रहे हैं, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। तो कोशिश करूँगी कि कल के कार्यक्रम में आपका ये गाना हम बजा सकें, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी श्रोता भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्राइडे की शाम, मुझे 04397997667 पर अपने संदेश ज़रूर भेजें।

तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट वीकेंड। और आप सभी को बता दूं कि आज के शो से संबंधित यदि कोई भी सुझाव हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 04397997667। और जाने से पहले कोशिश करूंगी कि आपको एक और बढ़िया सा गाना सुना के जाऊं।

दिल हो दिया।

हीरो, देसी हीरो।

ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਆ।

भी थोड़ा चिल किल रूड वाले मूड को तू हैगी ये कफा बट गुस्से में भी क्यूट हो लिट हो माना तुम हिट हो होरा दी की लोड साड़ा नाल जे कमिट हो किनी करा दस कदरा मैं तेरिया सर्दियां मेरी बिल्लो बाकी दी सहेलियां थोड़ा जस स्माइल कर ऐदा ना माइंड कर निक्की निक्की गल ते लड़ाई एनिक तू वेलिया उपसी फिर होगी मिस्टेक बट तू जान दी है मेरा लव नहीं फेक लव मैं तो सोना लबे जे तू मैनू छड़े पै जाने बवाड़े फिर हो जू ओदी हड्डी ब्रेक

0: ध्यान दीजिए।
1: गूंज उठी शहनाई।

बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन पांडे।

0: ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: Party hits for the weekend. Desi Dance Party on SBS South Asian.

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल

उसके इशारों पे मैं हम चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सक्समी को।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहा, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली।

SBS South Asian.

Slow down, boys.

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: ए राजा बजाना।

0: हमारी बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद। खाना खा के जाइएगा।
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
2: From India to Miami to the whole world. Go ahead and slow it down, girl.

Desi Dance Party on SBS South Asian.

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: Subscribe to SBS South Asian on YouTube to see our latest content.